0: ala buku bagi berbagai berbagai dosa. Saya singgung saya kalau si sehat pun para tuan tuan para. So so memang sumber awal yang hasil di dalam dunia kita jadi para netizen kita orang kan dari dari dasar kita ini adalah kata kita Allah re. Aku pernah telah berada di dalam usaha usaha kita sebelum kita melakukan cukup.
1: Jadi mana yang berada? Abi boleh jadi orang yang muda sendiri orang berani kerana itu tuh bukan sih. Kalau dilari ham sendiri dilari ham program zaman di dalam bermain. Kita berani mana yang dikira satu korban satu bermain. Oh masa itu mahu dalam dalam tuh kita mesti jadi sebab mohon sih. Sebab apa? Ibu mak bawa bermain mohon sih kita mesti mohon sih. Sebab itu kita break yang di zaman dah. Muda orang dikira kita surat negri. Oh bekerja ilaji, oh kami apa ilaji? Agar tak sudah kira. Agar satu bukan sih. Berapa nombor zaman kita dan saya sendiri sekitar 231, 140, 140. So sekarang kita berdiriom seluruh seluruh teriyom buat agak sebelum kita surat kita agak tahu ni sih. Tapi ke maksud agak rasa kali kita sekarang tu nak pergi sebelum nari awak mesti jadi tuh rumah tahu sekarang pura pura merasa pura pura tahu agak kejadian sih. Sehari tu berjuna macam seluruh berjuang poli terimaan oleh pendidik center jangan mohon sekarang kita surat beli sih. Orang tak pernah nizam mungkin jelas sekarang mat agak berikut jelas itu berjuna. Berapa jam kita masih terkalah bulwari awak masih penting so no 711-89 obviously this 85-83 2 brown turun mari kalau terang seguru user brown turun mari kalau sumpi oke sumpi oke assalamualaikum
2: assalamualaikum
1: hello adil apa kata sir terang lalu kita terang terkalah kami khabarah khabar terang terkalah sir radio wajib bendawai tawajjo zamun alak tarah kawai website quality TV radio design dah sini kalau kami terus terus terus terus موبائل کی بیلنس لگا وہ بکار دی او دغین بعد یہ رسم تو فالز وغیرہ کوئی یقینا اس فال کو تم ملا دی خبر ہم کو واضح الفاظ کی دی مشکلات کا تاس تو ہماری ان کے لیے ہم وہاں مشکلات نہیں بھی تو فال کو لے پارا ہے سب کو نو سان سو گیارا اداسی ننان ہے او ویسے جتنا بارا پیچا سی دراسی اس بھی کوئی جہاد سے نہیں لال بھی شخص موبائل رائٹ ویز کا بنتا ہے اب تو کوئی آ رہی ہے جیسے اس پہ تقل نام ہے لیکن ہم او دغرے کی دست سے تقل نام پر والی آغا مختلف ٹائپ کے رہ سکے رہے لیے اتا پیزا اتا درے بندی یعنی مجازی دراسی بندی با ساسو کسی جن دا بدا پر قرآن سا آغا جوڑی گی میسر جاگر دی گی آئیم وقات شا آو یاری سے سلام و زمان رائٹ پندے گی لکم دی آغا در دی اوبر بجی کم دی آغا چودہ کالا دی آو دین داوی جی دانی سے دادا سدھا سو جی کے نیشی سما بری پندو بندی آغا در درازی آو رائٹ سے دیو سایت کنی آغا تر درازی دی درازی
0: तो इनमें भी कुछ सत्यापन हुआ पड़ा
1: है जी जी
0: आज तुमने तो बात बात आता साल ये नरोदा है ना
1: जी जी
0: तो ना ये नरोदा योग पर बात जो भी सेवा रखी जाने लगी तो जी जी या बात होता है कि तुमने उसी जिला का या जोर वाली
1: जी जी
0: योग पर मार दिया या जोर की बात बात अलग बाइक वगैरह चलेगी ना और सेटल सही
1: जी जी
0: और सेटल चली जाएगी या सब बात बात सेटल सही आगे लोग नियम तो मिला देते हैं कि ना जब तक आगे तो इसको नियम तो आपको तो लाइफ आगे लोग तो हम जाएं इस चीज़ के लिए बार आप जो है ना वो तो नियम पटो आगे जाओ सब चीज़ इसको क्या चीज़ आगे जाओ इसको ले वो जो बात पति जी की है अलग वजह नहीं करी थी ना अलग वजह तो बार आप चला बंदा yang masalah masalah lain pernah di kalsis berbentuk alhamdulillah baik saya tak pernah cipta
1: lagi. Dia rasa zaman aku dah cipta sebelum rata di dia sendiri. Agar kabar aku dah nyepir dan dah garur waka sya sas dah kabar nak baca mustahil cium mustahil cium lagi. Agar anak kita semua sama sekali asuh mana kita call tu uci. Agar kabar aku sana kita semua uci. Call tu tu pun kita kalbum kita semua. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. वाह सदा फिर जाता है मदने को सब सुबह काल को बोलो आदि सर में खबर हुई कि कल सुबह ले कुछ कोई आज सुबह 309-711-7399 0309-711-8899 0307 वो यो अचास नह बंदे तो कॉल वगैरह आगा तो उसे मिसल इस पाप जाती है आज बंदे मैं तो जगह दिया सलामुअलैकुम आपको और सबको स्पेशल सलाम और ये मोहम्मद उवेस चिकित्सक है सर देखा जी तमन्ना को मोहम्मद उवेस सब देखो जी तमन्ना सर दूर जंगल है ना अगर उसे कॉल्स कोई ऐड से तो मुझे लगी है कि राज्य के ना शामिल है ये
0: बड़ों का तो भाजो मरीज राजा में है सर ना आज तो सब मरीज की चुनाव या लोग मरीज में राज्य जरा ना सब दस या मरीज का शेयर आरोप आते
2: ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ
1: ಬಿಡಿದ್ರೆ
2: मजा

0: का दर्द खत्म करे। बवासीर, होमियोपैथी, कब्ज और मतली भी मुफीद है। मालिश के फवाए, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। पुष्टि और सिकड़े और सर की जेल के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त नहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिला कर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। रब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
1: आसमानी मामूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर चाहल भी खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों में झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है।

0: जो धूप के मोजे साथ से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन से आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर ले। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से धो ले। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923286।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रो। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मेदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मेदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जेल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त में हर मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिला कर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। रब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923286।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 पटग्राम चुन लिया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बत से मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक आजम अपनों को पास लाने का, पिछले को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखेगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें लाएगा। रेडियो 88.4 खुश रहने का जज्बा।
0: ग्रामो रेडियो को तसो आवाज और एक रेडियो अमन 88.4 पर ग्राम बजाय ओम श्री उसे।

बदले तू एक प्यारा नाम मोहम्मद का उजाला नाम मोहम्मद सतारा नाम मोहम्मद का उजाला नाम मोहम्मद वसलम।

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: Pegham aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: Radio Ama aaya aapki zindagi mein.
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
5: रेडियो अमन नेटवर्क।